0: बता श्रेता मेट मी जे स्पेक
1: मेट मी बता जदेन मेट मी वक्सी जे
2: मेट मी चिमाइमा
3: मेट मी सुदला
0: अमदस्तालो अमदस्ताला 6 कंपाउंड स्ट्रेट नमला सालोला डेडिकेशन स्ट्रेट का नाइस अमिबारी 93 यूमीएफएम स्ट्रेट राइट ला राइट द स्केल ला म्यूजिक नंबर नाइस वन गुड नाइट बता